0: जी हाँ जी हाँ जी, खम्बा कणी।
1: खनी गम्मा, क्या
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ते
1: बात
0: एक
1: है।
0: गाना तुसी जिहड़ा सुनिया है ना, ये साडे पिंड तो या कह लो राजस्थान दे एक फोक सॉन्ग
1: फोक है
0: तो
1: ना।
0: बनाया हुआ है, मिसमैच मूवी दे विच लिया। ये सॉन्ग दे विच क्या है कि मतलब मेरे घर मेहमान बन के कभी आओ। हाँ ते ए
1: मेरे घर मेहमान बन के कभी
0: बिल्कुल
1: आओ।
0: ते
1: अच्छा
0: इस
1: ये है गए है ना, इधर एक हो भी सीगा ना बड़ा मशहूर की सीगा, केसरिया बालम,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: भी
0: हाँ हाँ
1: राजस्थानी आंदा ना।
0: हाँ ओदी भी मैं स्टोरी सुना चुकी हाँ
1: अच्छा
0: की है
1: ओके।
0: उसकी स्टोरी। ते ए वाले सॉन्ग दी कोई स्टोरी नहीं है। खैर अज हुण आपां सैगमेंट जिहड़ा स्टार्ट कीता है इहदे च मैं राजस्थान दे कोई भी एक किले दी या कोई भी एक हिस्से दी कोई ना कोई स्टोरी मैं तुहानूं दसदी आं, तां ही तुहानूं एक उस माहौल च लाण लई आपां कोई ना कोई राजस्थानी सॉन्ग लै के आने आं। ते पिछे हल्का हल्का जिहा चला भी दो
1: लो लो
0: सॉन्ग ना।
1: लो लो लो।
0: आज बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं एक राजस्थान की ऐसी इमारत जो अपने आप में अनोखी या कह लो एक इकलौती ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव के बनी है, उसकी कोई नींव नहीं है और बहुत फेमस है। राजस्थान की कोई भी अगर बात चले, कोई भी अगर आप विजुअल देखो, सबसे पहले आई थिंक यही विजुअल आता है, उस यही पिक्चर आती है। और राजस्थान अगर आप घूमने भी जाओ और अगर आप जयपुर जाओ और ये जगह ना जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है हवा महल की। हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, तो उसकी आज हम बात करेंगे हवा महल के बारे में। ये जो ये महल है इतना अमेजिंग है, इतना अद्भुत है, देखने में बहुत सुंदर है। तो इसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने, तो जयपुर के राजा थे उस महाराजा थे उस टाइम पे। अब अगर हम बात करें उस टाइम वो उस जोन की, तो उस टाइम पे ना पर्दा प्रथा काफ़ी चल गई थी है ना, क्योंकि जब मुगल आए थे इंडिया में, अब आपको पता है बीइंग फ्रॉम हिंदू फैमिली यू नो, कहीं भी कल्चर में पर्दा नहीं था,
1: हाँ
0: था ही नहीं। ये
1: बिल्कुल।
0: कल्चर कहाँ से आया उस टाइम पे? बेसिकली जब अरब आए या मुगल आए वो लेके आए थे, उनकी औरतें कवर करती थी फेस। उस टाइम पे क्या हुआ, जो जितने भी शाही परिवार थे, जितने भी बड़े बड़े राज परिवार थे ना वहाँ की, आपको पता है कोई भी युद्ध होते थे, कुछ भी होते थे, तो सब फिल्मों में भी हमने कई बार रिजेम्बलेंस हुई है कि वो पर्दे मतलब वो ढक के रखती थी मुंह अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खूबसूरती, ताकि उनको कोई ना देखे बुरी नज़र से। तो वहाँ से ये पर्दा प्रथा एक मुगलों ने हमारे इंडियंस को या हिंदू परिवारों को दे दी, बेसिकली शाही परिवारों को।
1: जी
0: तब ये नॉर्मल फैमिली तक नहीं आया था ये कल्चर, पर वो धीरे धीरे करके वो पर्दा प्रथा शाही परिवारों में, राजा रानी राजपूत परिवारों में एक रिजेम्बलेंस हो गई कि एक
1: हाँ
0: रॉयल्टी कि
1: का
0: एक
1: प्रतीक है।
0: एथिक्स है कि हाँ तुम्हें मतलब एथनिसिटी मतलब आपको यही पहनना है और सिर ढकना है या कवर करना है,
1: जी
0: कि जो अच्छे लोग हैं मतलब कहते हैं ना रिस्पेक्टेड औरतें सिर ढक के, आज भी आप किसी राजपूत लेडी को मिलो वो लोग सिर ढक के रखते हैं। तो ये वहाँ से आई पर्दा प्रथा। तो उस टाइम पे पर्दा प्रथा काफ़ी पीक पर थी, हर कोई कवर मतलब वो नॉर्मल लोगों में भी आ गया था। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ शाही परिवार से चल के आम लोगों
1: हाँ,
0: तक
1: आम
0: पहुंचती
1: जनता
0: है,
1: तक,
0: वो
1: प्रजा तक
0: ट्रैवल करती है,
1: पहुंचना
0: चाहे वो खाना हो चाहे वो उनकी वेशभूषा हो। तो
1: जी
0: पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा पीक पे थी। तो शाही और जयपुर आज भी उतना ही खूबसूरत है, लेकिन उस टाइम पे ना जयपुर की खूबसूरती बहुत ही चरम सीमा पे थी, बहुत ही मतलब पीक पर थी। वहाँ की मतलब डेकोरेशन कह लो, बढ़िया बढ़िया इमारतें कह लो, और जो भी राजस्थान में फेस्टिवल्स होते थे, कोई अगर कोई झांकी निकल रही है या कोई भी बड़ा उत्सव है, उससे शाही परिवार की जो औरतें थी ना वो हमेशा है ना मतलब देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो आम लोगों के बीच में नहीं आती थी, वो अपना फेस कवर करके रखती थी। तो जो सवाई प्रताप सिंह जी थे महाराज जी, उन्हें लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। बाकी राजा उन्होंने नहीं सोचा किसी ने भी, लेकिन इनको लगा कि मेरे परिवार की औरतें, शाही परिवार की जो औरतें हैं ये सब मिस आउट कर जाती हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि उनके लिए कुछ ऐसा हो जिससे वो मिस आउट ना करें और वो सब कुछ देख लें। तो उन्होंने ये तो सोच लिया कि शहर के बीचों बीच मुझे कुछ ऐसा बनवाना है जिसमें आके रानियां या शाही परिवार के लोग फीमेल्स आराम से वो चीज़ देख सकें। तो उन्होंने कहा अब होगा कैसे, थॉट तो आ गया दिमाग में। फिर उन्होंने उनके सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आर्किटेक्ट उस टाइम पे जो थे लालचंद जी, उनको बुलाया, उन्हें पूरा अपना थॉट बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और कुछ तुम एक ऐसा ऐसा महल या ऐसी इमारत बनाओ जहाँ से हमारे मतलब जहाँ से अंदर से बाहर का तो सब कुछ दिख सके, लेकिन बाहर से अंदर क्या चल रहा है उसकी भनक भी किसी को ना लगे.
1: Okay.
0: तो इस तरीके की कोई इमारत बनाओ जिससे शाही परिवार की औरतें, जो भी हम उत्सव करते हैं, जो भी समारोह होते हैं, जो भी झांकियां निकलती हैं, या वो चीज़ हर एक चीज़ वो उसका लुत्फ उठा सके और मिस आउट फील ना करें. तो फिर लालचंद जी कहते ठीक है ओके डील डन करते हैं. तो उन्होंने सोचना शुरू किया, उन्होंने बड़ा सोचा, बड़े डू एंड डोंट्स किए, बड़ा कुछ उन्होंने किया. फिर एट द एंड उनको उस टाइम पे जो सवाई महाराजा सवाई प्रताप जी थे वो कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े. तो इनके भी दिमाग में वो थॉट था कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करें. तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी का जो मुकुट है उसकी रिजेम्बलेंस ली और उसके डिजाइन को लेके उन्होंने हवा महल का एक इमारत बनाई जिसमें बहुत सारे झरोके थे. झरोके यानी खिड़कियां. बहुत सारी खिड़कियां बनाई और उसमें ऐसा शीशा था जिससे अंदर से बाहर का तो दिख सकता है, बाहर से अंदर का नहीं दिख सकता है. तो वो उन्होंने इमारत बनाई और वो भी शहर के बीचों बीच. जब आप जयपुर जाते हो तो शहर के बीचों बीच हवा महल स्थित है जिसमें लगभग 953 झरोके हैं, 953 झरोके हैं. जिस आपको पता है शाही परिवार बहुत बड़ा होता था, रानियां होती थी, दासियां होती थी, बहुत सारे लोग होते थे. तो वो सारी मिस ना कर सके तो वो उन झरोकों से झांक के देखती थी जो भी. और आज भी वहाँ पे जयपुर में कोई भी अगर झांकियां निकल रही हैं, तीज बहुत अच्छी जयपुर की, मतलब तीज सबसे फेमस होती है जिन्हें पंजाबी में हम तियां कहते हैं. राजस्थान में भी तीज बहुत बड़ा उत्सव है. तो वो तीज की जो झांकी निकलती है ना वो भी वहीं से निकलती है. तो हर एक बड़े से बड़ी जो चीजें होती है ना वो हवा महल वाली रोड से ही निकलती है. तो वो 953 झरोके उन्होंने बनाया उसमें और ताकि अंदर से बाहर आराम से देखा जाए और बाहर से अंदर ना देखा जाए.
1: वाह.
0: और वो असल में कोई महल नहीं है, वो खिड़कियां ही है,
1: सिर्फ खिड़कियां
0: ही है. पर आप कभी भी जयपुर जाए तो जरूर एक बार उन झरोखों से झांक के देखिएगा, आपको लगेगा कि हम भी हिस्ट्री के किसी पन्ने में आ गए हैं. तो ये है हवा महल. और एक और चीज हवा महल की बड़ी अच्छी है कि उस टाइम पे आप कौन से एयर कंडीशन होते थे, है ना. पर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना इतने सारे झरोखे हैं, तो उनकी मतलब उसका जो वो इमारत इस तरीके से बनाई गई है कि वो वेंटिलेशन बड़ा शानदार है. तो आपको वहां जाओ ना हमेशा ठंड लगती है, हवा चलती रहती है. तो ये उसकी दूसरी खासियत है. तो ये हवा महल की कहानी आज यश की जुबानी.
1: यश की जुबानी
0: जी.
1: हवा महल की कहानी. वाह वाह वाह. अच्छा ये मैं सुनया सीगा वेंटिलेशन वाला, दिस वाज वेरी मच न्यू टू मी. जड़ा तुसी दस्या ना कि कारण जो सीगा 953 खिड़कियां दिल के झरोके में तुझको बिठाकर. सवाई सिंह साहब ने तो ही किया है ना कि
0: बिल्कुल. आप सोचो ना मतलब कितने आज हम लोग मतलब कहते हैं ना वुमेनिज्म और ये वो मतलब, और उस टाइम पे उन्होंने अपने परिवार की औरतों का सोचा कि यार इतना, क्योंकि वाकई बहुत सुंदर था उस टाइम पे जयपुर. आज भी है
1: बहुत जाना है, मेरी रीज है बड़ी बेहतरीन. फिर जो गए थे फोन करांगे कि कहां कहां जाए, कहां
0: कहां
1: आ जाए. अच्छा कोटा राजस्थान का हिस्सा.
0: जी जी.
1: आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि बॉर्डर ते पंदा गुजरात राजस्थान दे.
0: कोटा में ही है.
1: कोटा नहीं नहीं मतलब राजस्थान गुजरात लगे
0: नहीं है. नहीं नहीं.
1: ओके.
0: पर हां कोटा एक्चुअली सेंटर में पड़ता है, वहां से राजस्थान बॉर्डर भी टच होता है. सब कुछ मतलब कोटा इज इन सेंटर. When you see the map of Rajasthan, na, Kota center de vich hai.
1: Okay. Actually, ke vi gal hai na, kyunki utthe student har area to aanda, oh, fir jagah di apni khud di ek hunda na, oh, roots wali history is tarah di nahi, shayad upar uth ke aa paandi popular culture che, kyunki Punjab to hi bacche gaye hai na, Kerala to bhi gaye hoye hai. So,
0: central leading in coaching industry.
1: Ji, leading in coaching industry and leading in entertainment industry. Radio, hanji, te assi baithe paye haan, te khulla khada laage baithe paye haan. Tusi aao sanu apna koi bhai vadhiya ji kal baat sunao ki nahi sunani.
0: Bilkul bilkul. Shukarwar hunda hi ede layi ki sare hafte te assi galla baata karde haan, par ajj da din tuhanu dedicated hunda hai. Tusi vi aake shirkat kar sakde ho, tusi vi apne andar da RJ जगा सकते।
1: यस, अवनिंदर के आर्य को जगाएं।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरे अंदर तो ऑर्केस्ट्रा वाला पता नहीं क्यों जागता।
0: अमीर
1: रीज रह गई है वाली ना।
0: एक केड़े सीके रेडियो दे अमीर सिरानी जी जेड़े सब आकाशवाणी
1: हाँ,
0: दे विच बोलते सी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी में आपका ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब के सब बहुत ज़्यादा खुशनुमा होंगे। आज का दिन आपका अच्छा अच्छा जा रहा होगा। वैसे चलो कद्दावर लोग ने बड़े लोग ने गुफ्तगू करते सके इरफान नाम से क्या इरफान साहब राज्यसभा टीवी वास्ते उन्होंने भी काफी टाइम डीडी किया है ना मेरे ख्याल नाल। उन्होंने आवाज़ का जो बेस है ना क्या प्यार ना गल करते हैं। मतलब कुछ इंटरव्यूअर्स इस तरह के होंगे कि थानू इंटरव्यू ही जो है जिदा हो रहा है वाले इन्ना ध्यान नहीं बंदा ही कहता यार कि वधिया बोल रहा है ना। मॉडर्न टाइम्स अंदर आप सौरभ द्विवेदी नु ये कह सकते हैं कि ही इज दैट गुड है ना। हम तो लल्लन टॉप छड़ गए हैं पर वो भी मजेदार गुड गुड गुड कम कार वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम
0: विद
1: हिज एक्टिंग आल्सो। क्या कह रहा मित्र क्या क्या कहते हैं मित्र घी खाया करो मांस हड्डियां खा जाती हैं क्या बता। पर एक मैं गल दसा ज़्यादा करती दी गई इस तो भी ज़्यादा खराब क्वालिटी का ना काम असी देखिया बॉलीवुड च जानी दुश्मन देखी है। जानी दुश्मन क्या फिल्म है ना। ओ हो हो
0: सोनू निगम भी था।
1: सोनू निगम दी मैं गल कर ले सोनू निगम ने नहीं बख्शा भाई यार मतलब इट इज सच अ ब्लेसिंग कि सोनू निगम साहब इन्ने वधिया सिंगर ने लाइक ही सो ग्रेट कि उन्हें करियर नहीं खत्म होया नहीं तो इधर ही फिल्म इधर ही एक्टिंग दे नाल ना बंदे नूं 30 साल काम ना मिले जेल भी हो सकती है। पर सुना लैंदा सारेयां दा इधर दा काम सीगा
0: सप जिहड़ा बणिया सी।
1: हां हां हां अच्छा डायरेक्टर दा बेटा सी।
0: अच्छा
1: हां हां
0: नेपोकेट।
1: हां ओ नेपोकेट सीगा ओ तां मतलब फादर साहब ने शायद कोई रंज ही कड्या ओहदे ते बेचारे ते अरशद वारसी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उस फिल्म में अरशद वारसी अक्षय कुमार सोनू निगम सनी देओल मतलब स्टार कास्ट तो बहुत लंबी चौड़ी सी मनीषा कोइराला ते इस मुंडे का नाम की सी कोहली है मैं नाम भूल गया बिग बॉस च आया सी तनीषा दे नाल उहदा नाम जुड़िया सी ना काजोल दी सिस्टर दे नाल क्या सिस्टर वेरी गुड वेरी गुड। खैर खैर खैर ओह ना अरशद वारसी कहिंदा कहिंदा असीं रोज जाणा कहिंदे जिहड़े डायरेक्टर साहब सीगे प्रोड्यूसर सीगे ब्रिलियंट आदमी कहते हीरा बंदा उन्हें कभी किसी की पेमेंट नहीं मारी हमेशा वधिया पे करना इस करके असी फिल्म की सानू सब पता है फिल्म बहुत माड़ी है कहते असी पता किस तरह फिल्म की कि मैं जाए कहता कि सर मुझे अब मार दो प्लीज वो अगो कह रहे यार नहीं कर सकता वो सनी भी कह रहा कि मैं नहीं आ रहा दो दिन के लिए अब तो कुछ और करना पड़ेगा मतलब इदा फिल्म बनाई हुई है वाली। तो कहते अक्षय कुमार साहब को पता लग गया कि सनी देओल अवेलेबल नहीं है तो अक्षय कुमार का ना तद तक डैथ सीन हो चुका है अक्षय कुमार मर चुका है उस फिल्म के अंदर वो गया डायरेक्टर को कहते इस तरह करो तुम मैं कोमे तो उठा दो तो जो फाइट सीन सनी भाजी ने करना अवेलेबल नहीं लंडन गए हुए शूटिंग वास्ते मैं कर दिना उन्होंने जिंदा करता। अक्षय कुमार कहता मैं दो दिन के पैसे लेते दो दिन की दिहाड़ी पाई मैं हूं मार दो दोबारा मैं चल दू तो मतलब क्या बात है।
0: वो सीखा मतलब पहले जब छोटे सी वो सी तो होर छोटे होने जब क्योंकि आया सी क्योंकि सास भी कभी बहू थी उस च मिहीर मर जाता है बड़े लोग रोए सी उस टाइम
1: हाँ, हाँ, बड़ा तो यार रट्टा रहंदा सी मिहीर ने बड़ा तंग
0: किया। मैं स्टिल याद है मतलब स्टिल की है ताजी ताजी जब असि यूनिवर्सिटी सी उत्थे ग्रेजुएशन दे विच ते आई सी एकता कपूर है ना ये हर साल आंदे सी प्लेसमेंट वास्ते इन्हां ने हमेशा बालाजी ने आना सानू ये बालाजी आने वाली सारे ने पैना है भावे तुहानू स्क्रिप्ट आंदी नहीं बट यू हैव टू सिट लाइक नॉन नेगोशिएबल सीगा पूरे पूरे 200 बच्चा 300 बच्चा बैठा है बालाजी लई स्क्रिप्ट वास्ते ये सिर्फ आइडिया चुराना आंदे सीगे क्योंकि उन्होंने वो लेके फिर नवा सीरियल काट देना।
1: अच्छा हाँ यार ये बड़ा हाँ। सी पूरा इन्हां दा ही राज सीगा ना बालाजी दा 8 बजे शुरू होना जो मतलब ना कलेश बिना गल दा इन्हां दा ये 11:30 तक नहीं रुकदे सी कहानी गारेगर की कसौटी जिंदगी की सास भी गई बहू थी एक अद्धा साइड भी इन्हां दे चलदे रहिंदे सीगे कुछ ना कुछ एक अनुपमा भी इन्हां दा वो भी नहीं मुकदा पिया ना अनुपमा जी दा ही 6-7 विआह हो गया अपने आप च क्या बात है फेमिनिज्म जिंदाबाद गाइस। ते इधर वरिंदर शर्मा जी स्लीप एंड रिलैक्स तो सानू कहंदे ने कि हैलो कृष्णा जी एंड यश जी प्रोग्राम गोइंग वेरी गुड एज ऑलवेज इन्ना खुश हो गए ने उन्होंने कहा जी असीं एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दी जिहड़ी सेल है वो ला दित्ती है रेडियो हाँ जी दा हवाला दो एक बैड खरीदो ते नाल मैट्रेस मुफ्त ਮੁਫਤ ਗੱਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਕੋਟਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਸਾਜਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਸਾਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਛਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ।
0: ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
1: ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਹੀ ਆਤੇ ਹੈ। ਆਨੇ ਸੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਮਿਊਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਜਪਮਨ ਕੀ ਮੰਮੀ ਜੀ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ,
1: ਬਤਾਓ ਕੌਣ ਹੈ ਵੋ?
0: ਨੀਤੂ ਜੀ।
1: ਯੈਸ, 7 ਕਰੋੜ। ਨੀਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨੀਤੂ ਜੀ,
2: ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ।
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਈਏ।
0: ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਹੁਣੀ ਐਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ?
0: ਹਾਂਜੀ,
2: ਸੋਰੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
0: ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਹਰ ਦਾ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਕ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਹਨਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
1: ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
2: ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ,
1: ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਰਾਈਟ।
2: ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਾਨੂ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈ।
1: ਨੀਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ?
2: ਥੈਂਕ ਯੂ
1: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਬਰਫ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ
0: ਗਗਨ ਜੀ।
1: ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਰਫ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
0: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
3: ਭਾਈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਪਣੀ।
0: ਓਕੇ,
1: ਅੱਛਾ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
3: ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ 100% ਬੈਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਓਕੇ, ਪਰ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਆਈ ਨੋ ਭਾਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ?
3: ਬਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੀਕ ਵਧੀਆ।
0: ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ?
3: ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਭੇਜਤੀ ਟ੍ਰੈਂਟਿੰਗ ਲਈ, ਸ਼ਰਮਿਕ ਲਈ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
3: ਕੱਲ ਪਿਕ ਕਰਾ ਗਾ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ,
1: ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ?
3: ਹਾਂ ਜੀ।
1: ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ
0: ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
3: ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
3: ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ
1: ਅੱਛਾ, ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਐਮਏ ਹੋਈ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ?
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲਿਟਰਲੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋਬ ਗੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ
1: ਜੀ,
3: ਪਰ ਐਸ ਅ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਰਸਨ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ,
3: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਵਧੀਆ ਹੈ
3: ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ।
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
3: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
1: ਜੀ,
3: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ,
3: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
1: ਜੀ,
3: ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
1: ਸੋ ਰਾਈਟ,
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।
1: ਓਕੇ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
3: ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1: ਜੀ,
3: ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ
1: ਜੀ,
3: ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ
1: ਜੀ। ਜੀ,
3: ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ,
3: ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ।
1: ਵਾਹ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
1: ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਰੀ ਲੱਗੀ।
3: ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
1: ਜੀ,
3: ਕੱਪੜੇ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਪੜੇ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ।
3: ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ
1: ਜੀ,
3: ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵਾਅਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਸਮ ਦੀ
1: ਜੀ,
3: ਜੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹਬਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
3: ਜੇ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1: ਜੀ।
3: ਬਸ ਭਾਈ,
1: ਵਾਹ ਭਾਜੀ,
0: ਵਾਹ।
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਚਾਰੇ ਔਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹੈ ਨਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ ਲਾਈਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ,
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
1: ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ?
4: ਬਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
1: ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
4: ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ।
1: ਓਕੇ,
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ
4: ਜੀ, ਬਹੁਤ
0: ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ
4: ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
4: ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ।
0: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਰੈਗੂਲਰ।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
4: ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
4: ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ।
1: ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ
0: ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
4: ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਣਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ।
1: ਵਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ,
0: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਹਾਂ,
0: ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ,
1: ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਯਸ਼ ਜੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਸੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ।
4: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ।
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ
0: ਜੀ ਜੀ,
4: ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
0: ਜੀ ਜੀ
4: ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ
1: ਜੀ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਪੈਣੀ ਕਾਲਜ ਚ ਹੌਲ ਆਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ,

0: इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 04104545555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
5: हाँ जी, ओए

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
0: सोना चाहिदा
3: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
4: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
5: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
4: आज सिमी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
5: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
4: जेकर थानो भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au
6: Benji, ki haal hai pith dard da?
4: Jado da sleep and relax da Indian style room wala gadda kharidya, sab kuch theek hai. Thank you ede bare dassan layi.
6: Aur suno, hun sleep and relax har tarah de gaddiyan de naal bed vi banaunde ne. Sleep and relax da ek store Leverton North ate dooja nava store Ohans Road Epping vich vi hai. Manpasand gaddiyan ate storage bed khareedan layi contact karo. Sleep and relax, wake up feeling totally rested. Search us online or call 0433-465-492।
7: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
8: देखो सच बता दो
9: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
7: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधू पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच

आ रही है। उथे सियासत दे नाल जुड़ी खबर है जिथे पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणां दे विच हार तो बाद टीएमसी नेता ते ममता बैनर्जी दे भतीजे अभिषेक बैनर्जी दीआं मुश्किलां लगातार बढ़ रही ने। पार्टी दे कौमी महासकत्तर अभिषेक बैनर्जी तो कोलकाता दे विच सीआईडी ने वीरवार करीब 6 घंटे पुछ पड़ताल की। यह पुछ पड़ताल पश्चिम बंगाल विधानसभा दे विच पार्टी दे विरोधी धिर नेता दे नाल जुड़े हुए फर्जी हस्ताक्षर मामले दे विच की गई है। अभिषेक सीआईडी दे मुख दफ्तर दे विच कल शाम 6 बजे दे आसपास पहुंचे फिर राति 11 बजे बाहर आए। अभिषेक बैनर्जी तो 4 सवाल पूछे गए ने कि उन्हां दे कोल ओरिजिनल प्रस्ताव सी जिसकी कापी विधानसभा स्पीकर नूं भेजी गई। विरोधी धिर नेता नूं चुनण दे लई 6 मई ते 19 मई नूं होईआं 2 बैठकां दे दौरान पार्टी दे किहड़े किहड़े लोग मौजूद सी कि उन्हां नूं पता सी कि कुछ विधायकों ने कहा है कि प्रस्ताव दे उत्ते उन्हां दे हस्ताक्षर नहीं ने। ते 4th सवाल यह कि कुछ विधायकों ने ब्लॉक लैटर दे विच दूसरियां दे बराबर लिखावट दे नाल हस्ताक्षर क्यों किते। असल दे विच सीआईडी इन्हां सवालों दे लई अभिषेक बैनर्जी तो हुण सबूत भी मंग रही है। यह सारा विवाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बैनर्जी के कालीघाट स्थित रिहायश के उत्ते सदी गई बैठक के नाल जुड़िया होया जिस दे विच विधानसभा दे विच विरोधी धिर दे नेता दे नाम दे उत्ते चर्चा होनी सी। दोष यह है कि इस मामले दे विच तैयार किए गए दस्तावेजा दे उत्ते कई विधायकों की गैर मौजूदगी दे विच ही उन्हां दे हस्ताक्षर कर दिते गए सी और इन्हां दोषां दे सामने आने तो बाद ही यह विवाद खड़ा होया सी ते अभिषेक बैनर्जी नूं हुण इसे मामले दे विच घेरिया गया। ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੇਟ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा कर रहे थे जिस दे उत्ते पत्थरबाजी की गई। यह घटना इटावा टुंडला रेल सैक्शन दे उत्ते वापरी है। पुलिस दे मुताबक एक डब्बे दे उत्ते ही पत्थरबाजी की गई सी। हालांकि पहली बार नहीं होया कि जदों भारत दे विच रेल गड्डियां दे उत्ते पत्थरबाजी की गई होवे। हाँ, RSS प्रमुख दे उस रेल गड्डी दे विच मौजूद होने चलते हैं यह खबर थोड़ी बड़ी जरूर है, पर भारत दे विच यह बड़ी चिंता का विषय है कि नौजवानों की तरफ तो खास तौर दे उत्ते रेल गड्डियां दे उत्ते पत्थरबाजी की जाती है। उथे अमृतसर की अदालत दे विच श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू विक्रम मजीठिया ते होर अकाली वर्करां दे खिलाफ दर्ज FIR नंबर 91 दे संबंधी अहम सुनवाई रखी हुई है। दोवां धिरां दीआं दलीलां सुनन तो बाद मानयोग अदालत ने मामले की अगली सुनवाई हुण 15 जून की तारीख मुकर्र कर दिती है। दस दिए कि अदालत वालों पुलिस थाणा मजीठा नूं CCTV फुटेज करन दे लई भी सख्त टिप्पणियां कीतीआं गईआं ने। मामले च दोष है कि विक्रम मजीठिया ते उसदे 50 तों वध हमायतीआं ने थाणा मजीठा अंदर पुलिस दे दस्तावेज पाड़े ने ते सरकारी काम दे विच रुकावट पाई है। ऐसे संबंध दे विच FIR दर्ज की गई सी ते उसे FIR दे आधार दे उत्ते अदालत च गए केस दे विच मजीठिया दे वकीलां दी तरफ तो अपना तर्क पेश किया गया। उथे एक दो मंदभागियां खबरां भी सांझियां करदे चलीए। पहला भारत दे नाल जुड़ी जिथे कौमांतरी प्रसिद्धि प्राप्त शूटर जसपाल राणा दा 49 साल की उम्र दे विच ही देहांत हो गया। मशहूर शूटर होने दे नाल नाल भारत दी ओलंपिक मैडल जेतु मनु भाकर दे कोच भी सी। उन्हां दे देहांत दे उत्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स दे उत्ते पोस्ट किया ते कहा है कि जसपाल राणा दे अचानक देहांत तो बाद मैं परेशान भी हाँ हैरान भी हाँ। वो एक कमाल दे खिडारी सी, कोच होने दे नाल नाल बड़े सरल ते बड़े नेक दिल इंसान भी सी। भारत दे विच शूटिंग नूं एक खेड दे रूप दे विच लोकप्रिय या प्रसिद्धि दिलवाण वाले जसपाल राणा ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई सी। दस दिए कि जसपाल राणा ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप ते एशियन गेम्स दे विच भी भारत नूं गोल्ड मैडल दिला के भारत दा नाम रोशन किया सी। 1994 च पहली बार उन्होंने कौमांतरी जूनियर जिहड़ी एक कंपीटीशन सी उस दे विच पार्टिसिपेट करके सोने का तमगा हासिल किया सी ते उस तो बाद जसपाल राणा ने निशानेबाजी दे विच कदे भी मुड़ के नहीं देखिया। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, देश विदेश दे विच कई सारे कंपीटीशन दे विच उन्होंने तमगे हासिल किए सी। उधर एक होर तमगा नशीन की खबर मंदभागी खबर है, आस्ट्रेलिया दे नाल जुड़ी है जिथे आस्ट्रेलिया की स्प्रिंटर जैमा स्टैपलटन का 25 साल की उम्र के ही देहांत हो गया और अपने परिवार के नाल विदेश छुट्टियां कट्टन गए हुए सी। स्टैपलटन ने 2025 दे विच स्टावल गिफ्ट जिहड़ी एक प्रतियोगिता सी उस दे विच तीसरा स्थान हासिल किया सी। आस्ट्रेलिया

हां जी रेडियो हां जी 1674 एम दे उते तुहाडा सारेयां दा स्वागत जी। अज 12 जून ते शुक्रवार दा दिन है ते आपां हुण रेडियो हां जी दे सिडनी स्टेशन तों लाइव शोज एक बार फिर तों लैके हो गए हाजर। लंबे ब्रेक तों बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ते प्रोग्राम अगले हफ्ते तों बकायदा शुरू करांगे। जेड़े जेड़े दिन दे जेड़े जेड़े प्रोग्राम हुंदे सी ते कुछ नवे भी, पर अज शुक्रवार दे दिन थोनू दस दी कि अज प्रधान इलाका किहड़ा नहीं होना क्योंकि हरसीन जी अज हाजिर नहीं हैगे। सो मैं तुहाडे नाल अज फिल्मां दीआं ही गल्लां करनीआं ने। प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा थोड़ा लंबा चलेगा, उस तों बाद एक इंटरव्यू भी हैगी है इम्तियाज अली होना दी, वह भी तुहानू सुनावांगे प्रोग्राम दे अखीर दे विच। पर फिलहाल कुछ नवे गाने लैके आवांगे पर्दा बेपर्दा।

भाई काका जी, मैं सोचता है ना लिरिक्स लिखन के लिए, मैं हैरान है भी रात आलू खादे होने, सवेरे चाह बना रही है, गैस कर गई होनी है कुड़ी नू। कमाल ही करता है।

0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
1: 0433-280-252। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45 ते।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
4: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
5: देखो सच बता दो।
6: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
4: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
7: आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
8: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
9: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी खंबा खड़ी
1: खड़ी गम्मा
0: हाँ जी बिल्कुल
1: ते क्या बात
0: है? एक गाना तुसी जिहड़ा सुनिया है ना ये साडे पिंड तो या कह लो राजस्थान दे एक एक फोक सॉन्ग तो बनाया हुआ है मिसमैच मूवी दे विच लिया इस सॉन्ग दे विच क्या है कि मतलब मेरे घर मेहमान बन के कभी आओ खैर अज हुण आपां सेगमेंट जिहड़ा स्टार्ट कीता इहदे च मैं राजस्थान दे कोई भी एक किले दी या कोई भी एक हिस्से दी कोई ना कोई स्टोरी मैं तुहानू दस दियां तां ही तुहानू एक उस माहौल चलाण लई आपां कोई ना कोई राजस्थानी सोंग लैके आने आ ते पिछे हल्का हल्का जिहा चला भी दो सोंग ना आज बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की ऐसी इमारत जो अपने आप में अनोखी या कह लो एक इकलौती ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव के बनी है उसकी कोई नींव नहीं है और बहुत फेमस है राजस्थान की कोई भी अगर बात चले कोई भी अगर आप विजुअल देखो सबसे पहले आई थिंक यही विजुअल आता है उस यही पिक्चर आती है और राजस्थान अगर आप घूमने भी जाओ और अगर आप जयपुर जाओ और ये जगह ना जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता जी हाँ दोस्तों आज बात हो रही है हवा महल की हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है तो उसकी आज हम बात करेंगे हवा महल के बारे में ये जो ये महल है इतना अमेजिंग है

पर्दा प्रथा काफी चल गई थी है ना, क्योंकि जब मुगल आए थे इंडिया में, अब आपको पता है बीइंग फ्रॉम हिंदू फैमिली यू नो, कहीं भी कल्चर में पर्दा नहीं था, था ही नहीं। ये कल्चर कहाँ से आया उस टाइम पे? बेसिकली जब अरब आए या मुगल आए वो लेके आए थे, उनकी औरतें कवर करती थी फेस। उस टाइम पे क्या हुआ, जो जितने भी शाही परिवार थे, जितने भी बड़े बड़े राज परिवार थे ना, वहाँ की आपको पता है कोई भी युद्ध होते थे, कुछ भी होते थे, तो सब फिल्मों में भी हमने कई बार रिजेम्बलेंस हुई कि वो पर्दे, मतलब वो ढक के रखती थी मुंह अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खूबसूरती, ताकि उनको कोई ना देखे बुरी नजर से। तो वहां से ये पर्दा प्रथा एक मुगलों ने हमारे इंडियंस को या हिंदू परिवारों को दे दी, बेसिकली शाही परिवारों को। तब ये नॉर्मल फैमिली तक नहीं आया था ये कल्चर, पर वो धीरे धीरे करके वो पर्दा प्रथा शाही परिवारों में, राजा रानी राजपूत परिवारों में एक रिजेम्बलेंस हो गई कि एक रॉयल्टी की एक एथिक्स है कि हाँ तुम्हें मतलब एथनिसिटी, मतलब आपको यही पहनना है और सिर ढकना है या कवर करना है कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब कहते हैं ना रिस्पेक्टेड औरतें सिर ढक के, आज भी आप किसी राजपूत लेडी को मिलो वो लोग सिर ढक के रखते हैं। तो ये वहां से आई पर्दा प्रथा। तो उस टाइम पे पर्दा प्रथा काफी पीक पर थी, हर कोई कवर, मतलब वो नॉर्मल लोगों में भी आ गया था। ऑब्वियसली कोई भी चीज शाही परिवार से चल के आम लोगों तक पहुंचती है, वो ट्रैवल करती है, चाहे वो खाना हो चाहे वो उनकी वेशभूषा हो। तो पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा पीक पे थी। तो शाही और जयपुर आज भी उतना ही खूबसूरत है, लेकिन उस टाइम पे ना जयपुर की खूबसूरती बहुत ही चरम सीमा पे थी, बहुत ही मतलब पीक पर थी। वहाँ की मतलब डेकोरेशन कह लो, बढ़िया बढ़िया इमारतें कह लो, और जो भी राजस्थान में फेस्टिवल्स होते थे, कोई अगर कोई झांकी निकल रही है या कोई भी बड़ा उत्सव है, उससे शाही परिवार की जो औरतें थी ना वो हमेशा है ना मतलब देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो आम लोगों के बीच में नहीं आती थी, वो अपना फेस कवर करके रखती थी। तो जो सवाई प्रताप सिंह जी थे महाराज जी, उन्हें लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। बाकी राजा उन्होंने नहीं सोचा किसी ने भी, लेकिन इनको लगा कि मेरे परिवार की औरतें, शाही परिवार की जो औरतें हैं ये सब मिस आउट कर जाती है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि उनके लिए कुछ ऐसा हो जिससे वो मिस आउट ना करें और वो सब कुछ देख लें। तो उन्होंने ये तो सोच लिया कि शहर के बीचों बीच मुझे कुछ ऐसा बनवाना है जिसमें आके रानियां या शाही परिवार के लोग फीमेल्स आराम से वो चीज देख सकें। तो उन्होंने कहा होगा कैसे, थॉट तो आ गया दिमाग में। फिर उन्होंने उनके सबसे ज्यादा फेमस या सबसे ज्यादा टैलेंटेड आर्किटेक्ट उस टाइम पे जो थे लालचंद जी, उनको बुलाया। उन्हें पूरा अपना थॉट बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और कुछ तुम एक ऐसा महल या ऐसी इमारत बनाओ जहां से हमारे मतलब जहां से अंदर से बाहर का तो सब कुछ दिख सके, लेकिन बाहर से अंदर क्या चल रहा है उसकी भनक भी किसी को ना लगे। तो इस तरीके की कोई इमारत बनाओ जिससे शाही परिवार की औरतें, जो भी हम उत्सव करते हैं, जो भी समारोह होते हैं, जो भी झांकियां निकलती हैं, या वो चीज़ हर एक चीज़ वो उसका लुत्फ उठा सके और मिस आउट फील ना करें। तो फिर लालचंद जी कहते ठीक है, ओके, डील डन करते हैं। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, ने बड़ा सोचा, बड़े डू एंड डोंट्स किते, बड़ा कुछ उन्होंने किया। फिर एट दी एंड उनको उस टाइम पे जो सवाई महाराजा सवाई प्रताप जी थे वो कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े। तो इनके भी दिमाग में वो थॉट था कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करें। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी का जो मुकुट है उसकी रिजेम्बलेंस ली और उसके डिजाइन को लेके उन्होंने हवा महल का एक इमारत बनाई जिसमें बहुत सारे झरोके थे, झरोके यानी खिड़कियां, बहुत सारी खिड़कियां बनाई और उसमें ऐसा शीशा था जिससे अंदर से बाहर का तो दिख सकता है, बाहर से अंदर का नहीं दिख सकता है। तो वो उन्होंने इमारत बनाई और वो भी शहर के बीचों बीच, जब आप जयपुर जाते हो तो शहर के बीचों बीच हवा महल स्थित है जिसमें लगभग 953 झरोके हैं, 953 झरोके हैं। जिस आपको पता है शाही परिवार बहुत बड़ा होता था, रानियां होती थी, दासियां होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, तो वो सारी मिस ना कर सके तो वो उन झरोकों से झांक के देखती थी जो भी। और आज भी वहां पे जयपुर में कोई भी अगर झांकियां निकल रही हैं, तीज बहुत अच्छी जयपुर की, मतलब तीज सबसे फेमस होती है जिन्हें पंजाबी में हम तियां कहते हैं, राजस्थान में भी तीज बहुत बड़ा उत्सव है। तो वो तीज की जो झांकी निकलती है ना वो भी वहीं से निकलती है। तो हर एक बड़े से बड़ी जो चीजें होती है ना तो वो हवा महल वाली रोड से ही निकलती है। तो वो

0: 953 झरोके उन्होंने बनाया उसमें, और ताकि अंदर से बाहर आराम से देखा जाए और बाहर से अंदर ना देखा जाए।
1: वाह।
0: और वो असल में कोई महल नहीं है, वो खिड़कियां ही है,
1: सिर्फ
0: खिड़कियां ही है। पर आप कभी भी जयपुर जाए तो जरूर एक बार उन झरोखों से झांक के देखिएगा, आपको लगेगा कि हम भी हिस्ट्री के किसी पन्ने में आ गए हैं। तो ये है हवा महल। और एक और चीज हवा महल की बड़ी अच्छी है कि उस टाइम पे कौन से एयर कंडीशन होते थे, है ना, पर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना इतने सारे झरोखे हैं, तो उनकी मतलब उसका जो वो इमारत इस तरीके से बनाई गई है कि वो वेंटिलेशन बड़ा शानदार है। तो आपको वहां जाओ ना, हमेशा ठंड लगती है, हवा चलती रहती है, तो ये उसकी दूसरी खासियत है। तो ये हवा महल की कहानी आज यश की जुबानी।
1: यश की जुबानी
0: जी,
1: हवा की, हवा महल की कहानी। वाह वाह वाह। अच्छा ये मैं सुनया सीगा वेंटिलेशन वाला, दिस वाज वेरी मच न्यू टू मी, जेड़ा तुसी दस्या ना कि कारण जो सीगा 953 खिड़कियां दिल के झरोके में तुझको बिठाकर। सवाई सिंह साहब ने तो ही किया है ना कि
0: बिल्कुल। आप सोचो ना, मतलब कितने आज हम लोग मतलब कहते हैं ना वुमेनिज्म और ये वो, मतलब और उस टाइम पे उन्होंने अपने परिवार की औरतों का सोचा कि यार कितना, क्योंकि वाकई बहुत सुंदर था उस टाइम पे जयपुर।
1: आज भी है। जाना है, मेरी रीज है बड़ी
0: बेहतरीन।
1: फिर जरूर गए थो हमने फोन करांगे कि कहां कहां जाए, कहां कहां आ जाए। अच्छा कोटा, कोटा राजस्थान था हिस्सा
0: जी जी।
1: आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि बॉर्डर पे पैंदा गुजरात राजस्थान दे,
0: कोटा कोटा में ही है।
1: कोटा नहीं नहीं, मतलब राजस्थान गुजरात लगे
0: नहीं है। नहीं नहीं,
1: ओके।
0: पर हां कोटा एक्चुअली सेंटर में पड़ता है, वहां से राजस्थान बॉर्डर भी टच होता है, सब कुछ। मतलब कोटा इज इन सेंटर, व्हेन यू सी द मैप ऑफ राजस्थान ना, कोटा सेंटर दे विच है।
1: ओके ओके। एक्चुअली के भी गल है ना, क्योंकि उथे स्टूडेंट हर एरिया तो आंदा, वो फिर जगह दी अपनी खुद दी खुंदा ना, वो रूट्स वाली हिस्ट्री इस तरह दी नहीं शायद ऊपर उठ के आ पांदी पॉपुलर कल्चर च, क्योंकि पंजाब तो ही बच्चे गए है ना, केरला तो भी गए हुए हैं। सो हां,
0: सेंट्रल लीडिंग इन कोचिंग इंडस्ट्री
1: जी, लीडिंग इन कोचिंग इंडस्ट्री एंड लीडिंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। रेडियो हां जी, ते असी बैठे पए आ ते खुला खाड़ा लागे बैठे पए आ, तुसी आओ सानू अपना कोई भाई वधिया जी कल बात सुनाओ कि नहीं सुनानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रवार हुंदा ही इहदे लई है कि सारे हफ्ते ते असी गल्लां बातां करदे आ, पर अज दा दिन तुहानू डेडिकेटेड हुंदा है, तुसी भी आके शिरकत कर सकदे हो, तुसी भी अपने अंदर दा आरजे रेडियो दे अमीर सिरानी जी, जिहड़े आकाशवाणी दे विच बोलदे सी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, आकाशवाणी में आपका ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब के सब बहुत ज़्यादा खुशनुमा होंगे, आज का दिन आपका अच्छा अच्छा जा रहा होगा। वैसे चलो, कद्दावर लोग ने, बड़े लोग ने गुफ्तगू करते सके, इरफान नाम से क्या, इरफान साहब राज्यसभा टीवी वास्ते, उन्होंने भी काफी टाइम डीडी किया है ना मेरे ख्याल नाल, उन्होंने आवाज का जो बेस है ना, क्या प्यार ना गल करते हैं। मतलब कुछ इंटरव्यूअर्स इस तरह के होंगे कि थानू इंटरव्यू ही जो है जिदा हो रहा है वाले इन्ना ध्यान होना, बंदा कहता यार किन्ना वधिया बोल रहा है ना। मॉडर्न टाइम्स के अंदर आपा सौरभ द्विवेदी नु कह सकते हैं कि ही इज दैट गुड है ना, हम तो लल्लन टॉप छड़ गए हैं, पर वो भी मजेदार, गुड गुड गुड कामकार, वेरी गुड। I'm very happy with him.
0: With his acting?
1: With his acting also. क्या मित्र, क्या कहते हैं, मित्र घी खाया करो, मांस हड्डियां खा जाती हैं, क्या बता। पर एक मैं गल दसा, ज्यादा कर दिती गई, इस तो भी ज्यादा खराब क्वालिटी का ना काम असी देखिया बॉलीवुड च, जानी दुश्मन देखी है। जानी दुश्मन क्या फिल्म है ना, ओ हो।
0: सोनू निगम भी था।
1: सोनू निगम दी मैं कर रहा है, सोनू निगम ने नहीं बख्शा भाई यार, मतलब इट इज सच अ ब्लेसिंग कि सोनू निगम साहब इन्ने वधिया सिंगर ने, लाइक ही सो ग्रेट कि उन्हें करियर नहीं खत्म होया, नहीं तो इदां दी फिल्म इदां दी एक्टिंग दे नाल ना बंदे नूं 30 साल काम ना मिले, जेल भी हो सकती है। पर सुनन अंदर सारे दा इदां दा काम सी,
0: सप जिहड़ा बणिया सी।
1: अच्छा डायरेक्टर दा बेटा सी।
0: अच्छा
1: हां ओ नेपो किड सीगा, ओ तो मतलब फादर साहब ने शायद कोई रंज ही कढ़िया ओहदे ते बेचारे ते। वो अरशद वारसी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस फिल्म के अंदर अरशद वारसी, अक्षय कुमार, सोनू निगम, सनी देओल, मतलब स्टार कास्ट तो बहुत लंबी चौड़ी सी, मनीषा कोइराला, ते इस मुंडे का नाम की सी कोहली है, मैं नाम भूल गया, बिग बॉस च आया सी तनीषा के नाल उहदा नाम जुड़िया सी ना, काजोल दी सिस्टर दे नाल, क्या सिस्टर, वेरी गुड वेरी गुड, खैर खैर खैर, वह ना अरशद वारसी कहता कहता असी रोज जाना, कहते जे डायरेक्टर साहब सके प्रोड्यूसर सके ब्रिलियंट आदमी, कहते हीरा बंदा, उन्हें कभी किसी की पेमेंट नहीं मारी, हमेशा वधिया पे करना, इस करके असी फिल्म की, सानू सब पता है फिल्म बहुत माड़ी है, कहते असी पता किस तरह फिल्म की, कि मैं जाए कहता कि सर मुझे अब मार दो प्लीज अगो कह रहे यार नहीं, यार नहीं कर सकता, वो सनी भी कह रहा कि मैं नहीं आ रहा दो दिन के लिए, अब तो कुछ और करना पड़ेगा, मतलब इदा फिल्म बनाई हुई है वाली, तो कहते अक्षय कुमार साहब ने पता लग गया कि सनी देओल अवेलेबल नहीं है, तो अक्षय कुमार का ना तद तक डेथ सीन हो चुका है, अक्षय कुमार मर चुका है उस फिल्म के अंदर, वो गया डायरेक्टर को, कहते इस तरह करो तुम मैं कोमे तो उठा दो, तो जो फाइट सीन सनी भाजी ने करना अवेलेबल नहीं, लंडन गए हुए शूटिंग वास्ते, मैं कर दिना, उन्होंने जिंदा करता, अक्षय कहता मैं दो दिन के पैसे लेते, दो दिन की दिहाड़ी पाई है, मैं हूं मार दो दोबारा, मैं चल दू, तो मतलब क्या बात है,
0: वो उसी का मतलब पहले जब छोटे सी के उसी तो होर छोटे होने जब क्योंकि आया सी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उस च मिहीर मर जाता है, बड़े लोग रोए सी उस टाइम,
1: हाय हाय बड़ा यार रट्टा रहंदा सी मिहीर ने, बड़ा
0: मैंने स्टिल याद है, मतलब स्टिल की है ताजी ताजी, जो असि यूनिवर्सिटी सी उत्थे ग्रेजुएशन दे विच, ते आई सी एकता कपूर है ना, ये हर साल आंदे सी प्लेसमेंट वास्ते, इन्हां ने हमेशा बाला जी ने आना सानू, ये बाला जी आने वाली सारे ने पैना, भावे तुहानू स्क्रिप्ट आंदी नहीं बट यू हैव टू सिट, लाइक नॉन नेगोशिएबल सीगा, पूरे पूरे 200 बच्चा 300 बच्चा बैठ रहा है बाला जी लई स्क्रिप्ट वास्ते, ये सिर्फ आइडिया चुराना आंदे सीगे क्योंकि उन्होंने वो लैके फिर नवा सीरियल काट देना,
1: अच्छा हाँ यार ये बड़ा हाँ। सी पूरा इन्हां दा ही राज सीगा ना बाला जी दा, 8 बजे शुरू होना जो मतलब ना कलेश बिना गल दा इन्हां दा, ये 11:30 तक नहीं रुकदे सी, कहानी गारे गर की कसौटी जिंदगी की, सास भी गई बहू थी, एक अद्धा तो साइड भी इन्हां दे चलते रहिंदे सी कुछ ना कुछ, एक अनुपमा भी इन्हां दा, वो भी नहीं मुकदा पिया ना, अनुपमा जी दा ही 6-7 विआह हो गया अपने आप च, क्या बात है, फेमिनिज्म जिंदाबाद गाइस, ते इधर वरिंदर शर्मा जी स्लीप एंड रिलैक्स तो सानू कहंदे ने कि हेलो कृष्णा जी and yes ji program going very good as always, inna khush ho gaye ne unna ne kaha ji assi end of financial year ji jehdi sale hai oh la ditti hai, radio hanji da hawala do, ek bed khareedo te naal mattress muft muft मुफ्त, गद्दा भी लेके जाओ, बेड भी लेके जाओ, रेडियो हांजी दा हवाला देके, ते आल्सो कॉटन मैट्रेस दे नाल एक पोर्टेबल शोल्डर मसाजर भी मिल रहा है, क्या बात है, थोड़े कंधियां ते थोड़े मोढ़ियां ते इन्ना भार हुंदा है ना, तुसीं वधिया वधिया शॉपिंग इन्हां तो करो, रेडियो हांजी दा रेफरेंस दो, ते शोल्डर मसाज भी लेके जाओ यार, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है शर्मा साहब, छा गए तुसीं,
0: ए चीज नु पहला शुरू करना चाहिए था क्योंकि इत्थे कंधियां ते बहुत सारी
1: बोझ बहुत है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, मैं ही आया खड़ा हमारी पहली कॉलर है जी, देखो बाकी सब प्लीज अपना कॉल म्यूट तो रखना जी, ते लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प की सारे की वारी आ जाए, साडे पहले कॉलर ने जी जपमन की मम्मी जी,
0: ओके ओके
1: बताओ कौन है वो,
0: नीतू जी,
1: यस 7 करोड़, नीतू जी तुसी ऑन एयर हो, सत श्री अकाल,
2: हां जी सत श्री अकाल जी,
0: सिडनी दे विच वर्ल्ड फेमस है नीतू जी,
2: जेडी की बहुत ज्यादा टैलेंटेड कुड़ी है, ये है टैलेंट को सबके भरया हुआ है, डिफरेंट इन बहुत वीट रहंदी है, कॉल कर रहंदी कि मैंने पता किसी ना किसी ने का मेरी कॉल का इंतजार रहंदा,
1: हाय हाय हाय थवाडी कॉल दा जी सारेयां नु ही इंतजार रहंदा, सानू सारेयां नु रहंदा कि जी थवाडी कॉल आपा किसी ना किसी तरीके नाल पिक कर लिए,
0: सानू गोडे गोडे चा
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: होनी है जी तुसी बोल रहे सी ना,
0: हां
2: सॉरी मेरी आवाज इको हो रही है,
0: कोई ना सानू वधिया आ रही है,
2: अच्छा अच्छा ठीक है,
1: ओके
2: ते की है तुसी बोल रहे सी ना मिहिर दा, बोल रहे सी ना सीरियल दे विच आंदा सी युगा
0: जी,
2: मतलब मैं नहीं देखा हुआ सीरियल, मतलब वो फीलिंग आ रही सी वैसे भी, हां लोगों नु क्रेज हुंदा सी, मैं भी शायद एक अद्धी बार सुने है किसी तो
0: जी,
2: ते मैं सोचा की ना भी ओ होवे, ते मैं फीलिंग चक ला की मैं भी असि भी बहुत वधिया सी सेलिब्रिटी तो घट आ,
1: हां जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: सोचना है ना, सोचन दा की जांदा है,
1: सोचन दा कोई मुल्ल नहीं
2: ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ
1: ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਰਾਈਟ,
2: ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈ।
1: ਨੀਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ?
2: ਥੈਂਕ ਯੂ
1: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਬਰਫ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ,
0: ਗਗਨ ਜੀ,
1: ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਰਫ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
0: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
3: ਭਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਪਣੀ।
0: ਓਕੇ,
1: ਅੱਛਾ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
3: ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ 100% ਬੈਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਓਕੇ, ਪਰ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਆਈ ਨੋ ਭਾਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ?
3: ਬਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੀਕ ਵਧੀਆ,
0: ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ?
3: ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਭੇਜਤੀ ਟਿੰਟਿੰਗ ਲਈ, ਸੈਰਮਿਕ ਲਈ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
3: ਕੱਲ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਚਲੋ
3: ਜੋਬ ਗੱਡੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ
1: ਜੀ,
3: ਪਰ ਐਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਰਸਨ।
1: ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭਾਜੀ,
3: ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ।
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
3: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
1: ਜੀ,
3: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ,
3: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
1: ਜੀ,
3: ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
1: ਸੋ ਰਾਈਟ,
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।
1: ਓਕੇ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
3: ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਣਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1: ਜੀ,
3: ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ
1: ਜੀ,
3: ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ
1: ਜੀ। ਜੀ,
3: ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ,
3: ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ।
1: ਵਾਹ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
3: ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
1: ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਰੀ ਲੱਗੀ।
3: ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
1: ਜੀ,
3: ਕੱਪੜੇ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਪੜੇ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ।
3: ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ
1: ਜੀ,
3: ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵਾਅਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਸਮ ਦੀ
1: ਜੀ,
3: ਜੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹਵਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ,
3: ਜੇ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1: ਜੀ।
3: ਬਸ ਭਾਈ
1: ਵਾਹ ਭਾਜੀ
0: ਜੀ ਵਾਹ,
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ
3: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹਨਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਪਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ ਲਾਈਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਭ
4: ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ।
1: ਓਕੇ
4: ਬਹੁਤ
0: ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
4: ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ
0: ਸ਼ੇਅਰ
1: ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
4: ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ
1: ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮਜ਼ੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਚ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
0: ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
4: ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ।
1: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
0: ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ,
1: ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ। ਯੈਸ ਜੀ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਸੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ।
4: ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ।
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ
0: ਜੀ ਜੀ,
4: ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
0: ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ,
4: ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ
1: ਜੀ।
4: ਹਾਂਜੀ

0: तेरा ना मासी बहाना हो अज सजना वे मिलिया नू हो गया जमाना हो अज सजना वे मिलिया नू हो गया जमाना
1: वाह वाह
0: मेरी करनी उड़ीक राही अखियां बिछाना मेरा रुस

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उन्हां दे 5 साल दे होण तों पहलां ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तों पहलां 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई wic.gov.au/kinder ते जाओ।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
4: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
0: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
5: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: अज सिमी भैन जी आए सी, उन्हां ने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
5: अच्छा, असी भी उन्हां नू कांटेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ Dairy.com.
0: Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger. Ranger Super Duty. Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options be available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business plate lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Corey Nal. Radio Hanji de hawale nal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford. Ready, set, Ford.
3: Hanji, hanji, oye, hanji, hanji.
4: Hanji Radio.
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
6: सूरज देवता
5: की मतलब?
6: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
5: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252। रेडीमेड गोल्ड डायमंड सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकते हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45 ते।
7: लो जी तुहाडी नजर है भोला।
0: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
8: भोले ने कसूते फसाते।
0: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्लियो। ओए भोले ओए 2
9: टेंशन निरी टेंशन
10: की होया
9: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
10: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो VY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
9: या 90-77-97-33
10: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
9: याद रखो 9077-9733
10: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
9: हर कदम तुहाडे नाल।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
11: किथे वज गई तेरी गड्डी?
12: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
11: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
13: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
11: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल।
14: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ। ਟੂਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸਵਿਚ ਟੂ ਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਕਾਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੇਦਾਂਗ ਰਾਇਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ਰਵਰੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਲਿਟਲ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਜੀ ਆਜ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ?
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਨ ਲੋ ਯੇ ਲੋਗ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹਾ
1: ਹੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ,
3: ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ।
1: ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸਰ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ, ਤੋ ਆਈ ਫਸਟ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਦ ਸਟਾਰਕਾਸਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਦਾਂਗ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ਰਵਰੀ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਾ ਸਫ਼ਰ? ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ ਨਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਯੇ ਮੂਵੀ ਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕਾ, ਔਰ what are you seeking out of it now, ki kya lagta hai ki aage jaake kya banne ki baat?
4: Hum kal hi baat kar rahe the ki kyunki abhi hum ye film humne wrap kari thi shayad December mein, aur uske baad hum dono ne you know ek aur film ki shooting start kari hai, lekin hum kal baat kar rahe the ki hamara time jo Punjab mein humne bitaya shooting ke dauran aur even on the off days jo humne time bitaya Punjab mein, usme hame itna maza aaya, and it was such a great experience. And I think we both love, all three of us really love,
2: yeah,
4: love Punjab. And of course, sir ke saath movie shoot karna, it's like a dream come true. Aur touchwood, hamara experience bahut hi acha raha.
1: Also, this early in the career, agar aap itna acha aur itna bada project helm karte hain, usme lead star karte hain, what's the mind mein aisa kya chal raha hota hai? Agar mera poochne ka ye point shayad ek jo abhi bhi aspiring actor hai jo is lens se dekh raha hoga aap logo ko, to how would he feel, unhe kaise, how to maneuver the pressure, aur kaisa tha pehla din set ka aap dono ke liye?
4: Actually, ye pressure agar hum dekhe to endless hai, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पार्ट होना ही एक प्रेशर है, इम्तियाज सर की फिल्म में होना, फिर आप देखते तो रहमान सर का म्यूजिक है, कास्ट में दिलजीत सर है, नसीर सर है, तो ये खत्म ही नहीं होता है प्रेशर। लेकिन आई थिंक जब सेट पे जाते हैं हमारा काम है वो भूल जाना और फोकस करना, एक सैटिस्फाइंग डे, मतलब हमारे गोल्स छोटे हो जाते हैं, बिगर, एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा बिगर पिक्चर ना देखूं जब तक शूटिंग प्रोसेस खत्म ना हो जाए। अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर है, मुझे लगता है मैं अभी भी एस्पायरिंग एक्टर ही हूँ, मैं उस माइंडसेट से हटा ही नहीं हूँ, मुझे लगता है अभी भी मैं वही हूँ जो ऑडिशन दे रहा था 2-3 साल पहले, तो बस यही कहूंगा कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग
1: एंड कीप डूइंग। बढ़िया। शर्वी जी, आप कुछ इसमें ऐड अप करना चाहेंगी?
2: जी,
1: how was your first day on the set?
2: My first day on set was actually amazing, because mera jo pehla din tha, actually usi din mujhe mera ek hi din tha actually Naseer sir ke sath shoot karne ka, aur mujhe actually wo mauka mila tha, so mera first day thoda sa intimidating bhi tha, थोड़ा नर्वस था, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं नसीर सर के साथ स्क्रीन शेयर स्पेस स्क्रीन
4: स्पेस
2: शेयर कर रही हूँ,
1: शेयर कर पा रही है, होता है फंबल, वी ऑल फंबल, इट्स फाइन। नहीं, बढ़िया मैडम, बढ़िया,
2: स्टॉप। बट ऑनेस्टली ये मौका बहुत बड़ा था और उनसे सीखने के लिए बहुत मिला एक्चुअली, बस कुछ थोड़े ही समय में। और हम जब एक्चुअली पंजाब में शूट भी कर रहे थे, तो मैं इससे पहले पंजाब गई नहीं थी कभी भी, पहले मैं एक्चुअली जब ये फिल्म मैं करने वाली थी उससे पहले मैं अपने मॉम के साथ पंजाब गई थी, जस्ट बिकॉज मुझे वहां जाके घूमना था, वहां के लोगों से मिलना था, खाना खाना, और मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद जब व्यास से रेकी पर जा रहे थे, तब मैंने और वेदांग ने डिसाइड किया था कि हम उनके साथ टैग अलोंग करेंगे और हम भी रेकी पर चलेंगे, और आई रिमेम्बर हम पहले ही दिन गोल्डन टेम्पल गए थे और वहां पे हमने ऑलमोस्ट 3, 4, 5 घंटे बिताए थे, हम बस बैठे हुए थे और हम बस दुनिया की बातें कर रहे थे, हमने सनसेट भी देखा था और फिल्म की बातें कर रहे थे, बट समवेयर हमारे मन में हमें ऐसा लगा था कि हमारा जो शेड्यूल शुरू करने से पहले हमें ना ऐसे लगा था कि कुछ ब्लेसिंग्स ही मिल गई थी हमें, और आई थिंक हम वो फीलिंग लेकर हमने बस फिल्म स्टार्ट की थी।
1: अमेजिंग। इम्तियाज सर, आपसे सवाल है मेरा कि आपने इरशाद कामिल साहब, ए आर रहमान साहब के साथ और आप तीनों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम हम सभी को दिया, अगर हम रॉकस्टार की बात करें या फिर लेटेस्ट चमकीला की भी बात करें, तो ये आपका हाउ डज योर प्रोसेस गो? तो जब एक जर्म आ जाता है कहानी का, तब से ही आपके साथ ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि वंस यू आर डन विद योर स्क्रिप्टिंग एंड ड्राफ्टिंग तब आप आगे जाकर उन्हें इन्वॉल्व करते हैं? हाउ डज इट?
3: जब वो जर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो जर्म बीमारी की शक्ल लेने लगता है, जब पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन अब हो चुका है, तो जिस स्टेज पर भी स्क्रिप्ट होती है उसकी मैं फिक्र नहीं करता। मैं रहमान सर से वो इन्फेक्शन शेयर करता हूँ, वो आइडिया जरूर शेयर करता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि ऐसे उनको बहुत सारी ऐसी भी कहानियां मेरी पता है जो अभी तक फिल्म बनी नहीं है, बट उनको पता है कि उनपे काम कर रहा हूँ। सो थोड़ा अर्ली मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, फिर उनके आइडियाज भी होते हैं जो म्यूजिकल होते हैं या विजुअल होते हैं, फिर इरशाद भी आते हैं पिक्चर में, फिर हम तीनों यूं ही बातें करते हैं बहुत ज्यादा, और फिर धीरे धीरे वो स्क्रीन प्ले बनता है, धीरे धीरे मैं उनको और चीजें बोलता रहता हूँ दोनों को, कहानी के पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, किस तरह से कहानी चलती है उसके बारे में, एंड लास्टली वी कम डाउन टू हमको किस तरह के गाने चाहिए। सो बाय द टाइम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स, क्या होता है ना कि उनको ऑलरेडी वो फिल्म की तरफ से आ रहे होते हैं ऑलरेडी, ये नहीं होता है कि ये एक गाना हमें बनाना है तो इसके बाद हम रिसर्च शुरू करें कि फिल्म क्या है और कैरेक्टर कैसा है।
1: ओके। माय पर्सनल फेवरेट हैज बीन वो नहीं सॉन्ग, और जो उसमें शायरी का एलिमेंट है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी राइटिंग भी लेकर आ पा रहे हैं, तो उसके लिए तो एक तो थैंक यू है सर आपका। मेरे एक्चुअली बातें तो आपसे बहुत लंबी चौड़ी करना चाहता हूँ, बट आई एम ऑन अ है ना स्पीडोमीटर, क्या कहते हैं जो भी होता है उस पर हूं मैं। अंग्रेजी थोड़ी इधर उधर है भले ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अनदर क्वेश्चन कि दिलजीत के साथ आपका एक और कोलैबोरेशन रहा है, हाउ इज ही वर्क वाइज, आपको कैसा, हाउ डू यू, व्हाट्स द वर्क कल्चर बिटवीन यू गाइस, और आगे और भी कोई हम देखें? मुझे लगता है कि अभी इस मूवी में उनका कोई खासा लंबा रोल है कि नहीं है, कि इट्स अंडर द कर्टन्स, सो हाउ वाज इट?
3: इसमें ऐसा था कि जब मैं चमकीला कर रहा था तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि यहाँ सेट पे दिलजीत दोसांझ है, तो जब मैं वापस आऊं का कर रहा था उनके साथ तो ऐसा नहीं एहसास हो रहा था कि चमकीला इस सेट पर, ये सारे लोग अलग अलग हैं, और ये दिलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी खूबी है कि जब वो किसी कैरेक्टर में होते हैं तो किसी और दूसरे कैरेक्टर की का सेंट नहीं होता उसके अंदर, तो हर बार एक फ्रेशनेस, दोनों बार एक फ्रेशनेस मुझे नजर आई और एक प्योरिटी है उस इंसान में, उस कलाकार में, जिसकी वजह से दोनों बार एक बहुत इंस्पायरिंग वर्क एटमॉस्फेयर था हमारा। मतलब आई थिंक सबसे बड़ा लंबा रोल उन्हीं का है इस फिल्म में, शायद उनका और वेदांत का। एक्चुअली हम लोगों ने नोट किया था कि शायद एग्जैक्टली उतना लंबा है, सो ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने गाने भी, एक गाना भी गाया है पिक्चर में
1: जी,
3: एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका भी, बट ये एकदम नया कैरेक्टर है, अलग, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, जिसकी झलक खुद, मतलब चमकीला और इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है उनके किरदार में।
1: सर एक, अगर मैं जब भी मेट की बात करूं और फिर लव आजकल के ऋषि कपूर साहब हो गया, या फिर जो सैफ का कैरेक्टर था ओल्डर टाइम का, फिर चमकीला, और अब मैं वापस आऊंगा पंजाब कनेक्ट, पंजाबी कनेक्ट, ये कोई दिल से आता कनेक्ट है कि ये आपका सुपरस्टिशन है कि भाई ये लकी चार में अगर पंजाब कनेक्ट डालूंगा तो फिल्म बम्पर ही जाएगी?
3: किसी भी बहाने, चाहे सुपरस्टिशन के या लकी चार मान के, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पंजाब जाऊं जरूर. एंड क्योंकि वहां पे वो सफेद मक्खन होता है ना, चिट्टा, वो तो आपको पता होगा तो कहीं नहीं होता वैसा, उस वजह से मैं जाने की कोशिश करता हूँ जो अभी भी पिंड में और कहीं ऐसी खास जगहों पे अच्छा वाला मिलता है. बट आई थिंक दैट जब भी मैंने पंजाब में कोई काम किया है तो फिर उस काम को करते हुए कोई दूसरी कहानी भी नजर आई है. और शायद मैं उन चीजों को बेहतर देख पा रहा हूं, या जब उन चीजों के लिए ज्यादा फील करता हूं, बट आई फील दैट आई रिसीव समथिंग. मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिलता है वहां से, वहां के लोग अप्रिशिएट करते हैं जो मैं कर रहा हूं. जब मैंने जब भी मेट की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी, पंजाब के लोगों को इतनी पसंद आएगी. मैं कोशिश कर रहा था कि पंजाब को गलत ना दिखाऊं, मैं कोशिश कर रहा था कि समझूं कि किस तरह से टर्बन बांधनी चाहिए या किस तरह से एक हर जगह की तहजीब कल्चर अलग होता है
1: जी.
3: तो लोगों को पसंद आए तो मुझे भी बढ़ावा मिला, सो ऑन एंड सो फॉर. फिर मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है कि जो टर्बंड सिख होते हैं वो हीरो नहीं होते.
1: एक्चुअली ये हमेशा हम लोगों को भी बीइंग पंजाबी से रहा है कि साइड के क्या फिर होता है ना कि स्टीरियोटाइप रोल हो जाएगा, या तो खुददार सब कुछ मैं बचा लूंगा या फिर है ना कॉमिक तो सरदार को लाइक एनी अदर गाय दिखाना, उसके लिए इट्स ह्यूज थैंक यू टू यू. और पंजाब से आप दोनों की तरफ सवाल है, कुछ पंजाब से कोई स्लैंग कोई वर्ड्स वगैरह पिक किया आप लोगों ने?
2: हमने
4: यहाँ बता नहीं सकते.
1: मैं थोड़े नाल होली होली गल्ला कर सकदा, पर जेडे ऑर्गेनाइजर ने वो तेज तेज मेनू कट
2: करेंगे.
1: Amazing. Best of luck to you guys.
2: Thank you.
1: Taylor is amazing. जाने से पहले मैं एक इम्तियाज अली साहब आपको कहना चाहूंगी, किसी ने कभी कहा था, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपकी लाइफ में कभी किसी ने जादू किया हो तो उसे मिले तो कभी थैंक यू जरूर कहना. थैंक्स फॉर तमाशा. तमाशा ना देखते दिमाग में ना आती तो शायद आपसे आज इंटरव्यू पे बात नहीं कर रहे होते. सो थैंक्स अ लॉट. और आप दोनों के मैं सबसे मेन वर्ड जो हमारा पंजाबी का है उसके साथ छोड़कर जाना, इनफैक्ट सारी टीम को, चढ़दी कला. सो चढ़दी कला टू ऑल ऑफ यू. आई होप मूवी डज वेरी वेल. थैंक यू. थैंक्स
4: सो मच. थैंक यू.
1: थैंक यू.
5: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
6: यार, उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है.
5: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया, ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस. रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी. तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग. फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45.
7: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस. ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने. हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596. गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ. आओ थोड़ा कोई हल करिए.
8: लाओ जी थोड़ी नजर है पोला.
9: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म.
10: पोले ने कसूते फसाते.
9: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो. ओए पोले ओए 2
11: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
12: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252। सोना चाहिदा
13: भरोसा चाहिदा
12: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 04332502 ते।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां

निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होमन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोई।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिललाहे ता के अंत न पाए जाए ए अंत न जाने को बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए केते मंगे जोत अपार केत्या गंत नहीं विचार केते खप टुटे वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने

ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, जिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

प्रेत अप्रेत देव सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्धं अगा।

कामं समस्तो पराजि समस्तस्तु तामं। तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म हीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे तरम सर्वां बरनांडिय अंडंड बांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज भेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित सुख के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशुक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपट चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਗੇ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तर निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो।

0: अंतर आत्म है सुमाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर

0: गुण गाए मालिक दे गुण गाउण लग जांदा। सतगुरु मनुख नूं इही समझाउंदा वी गुण गा लै, गुण गाउण दा समां, गुण गाण लई ही आया, जे गुण ना गाए, जिवें मैं हुणे बेनती कीती सी गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन है। गुण गाए जदों गुण गाउंदा उहदे नाल की हुंदा, जीवन दे विच विकास हुंदा, खिड़ाओ बणदा। भगत जन गुण गाउंदे ने, भगतां दे जीवन दे विच विकास क्यों बणदा, भगत सदा खेड़े विच क्यों रहिंदे ने, भगत सदा आनंद विच क्यों रहिंदे ने। तुसी जपजी साहिब दा पाठ करके आयो, महाराज उत्थे कहिंदे नानक भगतां सदा विकास, सदा विकास विच क्यों है, वह मालिक दे उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां किरत कर करदियां गुण गाउंदा है, इसे करके वह सदा विकास विच रहिंदा। विकास दा इको एक साधन है मालिक दे गुण गाउणे, नहीं तो विकास जिहड़ा खड़ाओ है चंद क समय का हुंदा। जे किसी नूं चीज की प्राप्ति हो जाए बंदा फुल वांगू खिड़ जांदा है, किसी चीज की कोई जिहड़ी चीज खुसगी ते ढेरी ढा के बह जांदा, जिहनूं भगत रविदास साहिब जी कहिंदे ने जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जिहदे कोले सहज है वह रोंदा नहीं है, भावें उहदा सब कुछ कोलों चला जाए, ते जदों उहनूं कुछ प्राप्ति हुंदी है उदों भी आपे तो बार नहीं हुंदा। मालिक दे गुण गाउंदा जीवन दे विच आनंद आ जांदा, जा आप जा जदों परमात्मा सच्चे नूं पाउंदा फिर ये खेड़ वापरदी है।
1: अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावै।
0: गुरमुख प्यारियो जिहड़ा सहज है ना, जदों यह अवस्था प्राप्त होगी इत्थे अहंकार नहीं है, इत्थे होमे नहीं है, इत्थे माया दा प्रभाव भी नहीं है। सारियां चीजां अहंकार होमै तजै माया, ते फिर महाराज कहिंदे सहज नाम समावे, उहदे जीवन दे विच सहज आंदा, सहज दे विच गुण गा के अखीर वह नाम दे विच समा जांदा, नाम दा रूप हो जांदा है।
1: आप करता करे सोई आप देता पाईए।
0: अरे सारी खेड तां वापरेगी जे परमात्मा कृपा करे, आप करता करे सो योही करन वाला, आप दे जे आप इस तरह दी कृपा करदा, इस तरह दी दा देंदा तां ही मनुख नूं ए चीज दी प्राप्ति हुंदी है।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम ते आईए जीओ।
0: एक बार फिर महाराज पहले बंद दी अखीरली पंक्ति दे विच गल चेते करवा रहे ने, दृढ़ करवा रहे ने, भाई जे हरी कृपा करे ता परमात्मा दा नाम ते आया जा सकदा। गुरमुख प्यारे आप कृपा लेनी है गुरु दी, अरदास करनी है महाराज कृपा बनायो, सतसंगत हुंदी रवे, कृपा करियो अमृत वेला संभाल दे रहिए, कृपा करियो तुहाडे गुण गाउंदे रहिए, और जदों आप कृपा दी अरदास करांगे ना इहदे नाल होमे नहीं आएगी। जे तुसी इह नहीं कहोगे तुहाडे अंदर हो सकदा अमृत वेले जागण दा हंकार भी पैदा हो जाए, हो सकता तुहाडे अंदर नाम जपण दे एक ईगो भी आ जाए भी मैं तां इन्ना नाम जपदा, वह प्रवाह नहीं है। इसे करके तो गुरु तेग बहादुर जी ने वचन किए सन, तीर्थ वर्त अर दान कर मन मैं तरै गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। वह सारे ते महाराज ने कट मारता जे गुमान आ गया। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, महाराज कहिंदे जे हरी परमात्मा कृपा करे ता ही मनुख सहज विच आके उस प्रभु परमात्मा दा नाम त्या सकदा है।
1: अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै जियो।
0: देखो जी दे अंदर, जिस जीव दे अंदर सच्चा ने हो पैदा हो गया, दो तरह दा ने, एक कूड़ा ने है जिहड़ा आप संसार नाल ला बैठदे आ, जिहनूं महाराज कहिंदे कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सम संसार, उत्थे ना वचन कीते ने कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, नाशवंत मनुख दा नाशवंत पदार्थां नाल ने लग गया, उह ने किसे काम दा नहीं है। इत्थे है अंदर सच्चा नेहो, जिहदे अंदर सच्चा ने परमात्मा दा प्रेम पैदा हो गया, पूरा सतगुरै जीओ, सतगुरु पूरे दी कृपा दे नाल इह खेड़ वापरदी है। सतगुरु जदों कृपा करदा मनुख दे अंदर कूड़ा ने खत्म हो जांदा, सच्चा नेहो

हां तिस सेवी प्रोनाउन है उस परमात्मा नू सेवदा सिमरा दिन रात कदे भी ओनू ना विसारा कदे भी ओ मेनू ना विसरे। इस अवस्था ते आके मनुख अरदास पता की करदा है।

0: महाराज कहिंदे भाई बड़िया भागां दे नाल सतसंगत दी प्राप्ति हुंदी है। अज इत्थे आपां बैठे हां इह कोई पूर्वले चंगे कर्मां दा फल मिल रहा है, यह कोई बड़िया भागां दा फल मिल रहा है, बड़िया भागां नाल ही सतसंगत पर असी पता की समझते हैं, जिन्हों पैसा मिल गया, जिन्हों शोहरत मिल गई, जिन्हों कोई इस तरह की चीज, आप कहने बड़िया भागां ला आ बड़िया भागां की निशानी है। बड़िया भागां तो बिना सतसंगत प्राप्त नहीं हुंदी, सतसंगत विच बैठन दा सुभाग नहीं मिलदा। सत संगत मिले बड़भाग, क्योंकि जदों सतसंगत विच बैठ के इत्थे जो बाणी दी विचार है गुरु दी मत दा विचार होवेगा तां जाके हर रस आवे जीओ। वह जिहड़ा श्रेष्ठ रस है जिथे जाके सारे रस तुहानू कूड़े लगणगे फिके लगणगे, और ये परमात्मा दा रस जिहड़ा है नाम दा रस है सबनों श्रेष्ठ है। इहदे सामने जिन्ने भी दुनिया दे रस ने सब फिके पै जाते ने। साडे कोले बहुत सारिया घटनावां ने, बहुत सारे जिहड़े इस तरह इशारे दिते गए ने, जिवें बाबा फरीद साहिब दे जीवन चों पढ़दे आं आपां, उन्हां तां कहा सी ना सक्कर खंड ने वात गुण माख्यो माझा दुध सभा वस्तु मिठियां रब न पुजन तुद। ओ अवस्था है, उस अवस्था ते जाके सारे रस फिके लगते ने, परमात्मा दा नाम दा रस प्राप्त हुंदा। ए खेड सतसंगत दे करन दे नाल वापरदी है।
1: आन दिन रह लिव लाए ता सहज समावाए जीओ।
0: जदों आन दिन मनुख परमात्मा विच लिव लाउंदा ता सहज विच ओदी अखीर जिहड़ी है समाई हो जाती है। सहज विच समाउणा, जीवन दे विच सहज आ जाना, पर एदे लई परमात्मा विच लिव लाउणी पैणी है। लिव तो बिना ये अवस्था प्राप्त नहीं हुंदी। जिन्हां नूं ये अवस्था प्राप्त होगी उन्हां दी लिव परमात्मा नाल लगी रहिंदी है, भावें कोई उन्हां नूं आरियां नाल दुफार कर दे, फिर भावें कोई चरखड़ियां ते चाढ़ दे, भावें उन्हां दा शरीर तूंबा तूंबा कर दे, उन्हां दी लिव नहीं कोई तोड़ सकता। ਇਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
1: ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ।
0: ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਵੈਰਾਗੀ, ਉਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਵੈਰਾਗੀ ਐ ਨੀ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

0: राय कह तू ही सारा संसार सृज्या, सारी सृष्टि तू ही पैदा कीती है।
1: तेरी कुदरत कोई न जाने, मेरे ठाकुर सगल राण।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। करते हैं आप दर्शन अपने कानों के माध्यम से, क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही अध्यात्म का ज्ञान हमारे हृदय में उतरता है और तब हमें होते हैं पुण्य दर्शन। हम अक्सर अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी जान लगा देते हैं दूसरों को समझाने में। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा कर दें तो शायद वो समझ जाए, या वैसा कर दूं तो सामने वाला मान जाएगा। किंतु आप जितना चाहे जतन कर लें, आप चाहे जितने भी बलशाली क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो, सामने वाले के हित की बात समझाने के लिए आप नाकाम होंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले में ये गुण हैं तो वो कभी नहीं समझेगा। कौन सा है वो गुण, छोटे से अंतराल के बाद जानते हैं। आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ। मैं हूं आपका दास।

पुण्य दर्शन में मैं हूं आपका दास। हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जान तक लगा देते हैं सामने वाले को समझाने के लिए कि क्या उसके लिए हितकारी है या नहीं, किंतु वो समझने को तैयार ही नहीं होता और उसका परिणाम उसके साथ, उसके परिवार, उसके साथ संबंध रखने वालों को भी भुगतना पड़ सकता है। याद है आपको जब त्रिलोकी ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन की राज्यसभा में उसे समझाने गए थे। भगवान ने हर वो कोशिश की किंतु दुर्योधन ने क्या उनकी बात मानी? भगवान ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव तक मांगे किंतु अहंकार के कारण दुर्योधन ने कहा वो 5 गांव तो क्या, 1 सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं देगा पांडवों को। क्या भगवान से शक्तिशाली कोई है? तो जिस अहंकार के चलते दुर्योधन ने उनकी नहीं सुनी ना समझी और महाभारत का युद्ध हुआ, तो सोचिए आपकी और मेरी क्या क्षमता है कि हम किसी को समझा सकते हैं। एक और बड़ा उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, कौन सा सोचिए, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया, आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अहंकार जिसमें हो उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता, क्योंकि वो अपने धन शक्ति पद के अहंकार में पूरी तरह से अंधा और बहरा हो चुका होता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति उसके वश में नहीं रहती। इसका एक और उदाहरण आता है रामायण में, जहां अहंकारी रावण को समझाने वाले एक नहीं कितने लोग थे। रावण की पत्नी, रावण का भाई, फिर श्री राम जी की सेना से अंगद, फिर हनुमान जी जिन्होंने केवल अपनी पूंछ से ही लंका जला दी थी। वो चाहते तो माता सीता को भी ले जा सकते थे श्री राम जी के पास, किंतु इन सब ने रावण को समझाया कि तुम अहंकार छोड़ो और श्री राम की शरण में जाओ, सीता माता को उन्हें सौंप दो, किंतु नहीं, रावण नहीं समझा और उसका अंत हुआ। आज तक हर साल हमारे दशहरा ग्राउंड में जलाया जाता है रावण। मित्रों, मेरा ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है, अहंकारी व्यक्तियों को पहचानिए। अहंकारी व्यक्ति को समझाना किसी के बस में नहीं होता। जब वो भगवान तक की नहीं सुनते तो आपको क्या लगता है वो हमारे ये छोटे मोटे एफर्ट्स को कुछ मानेगा? क्या उनमें सुधार आएगा? असल में मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप दुनिया सुधारने का ठेका लेते हैं, बल्कि असली मैच्योरिटी तो ये है कि जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। चाहे आप अपना सुख चैन छोड़कर अपना खून तक जला दो, वास्तव में इन लोगों से डील करते हुए असली समझदारी यही है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो और स्वयं भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। आपके बोले हुए शब्द कई बार असर नहीं करते, किंतु आपके किए गए एक्शन उसे सद्बुद्धि दिला सकते हैं। क्या पता आपको देखकर वो भी समझ जाए। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410 045 555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇਂ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ।
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਯੂ ਐਸ ਮੈਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,000 to 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ, ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ,
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ, ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਚਲਾ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ,
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ,
0: ਓਕੇ।
1: ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੋ,
0: ਓਕੇ।
1: ਆਈ ਗੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक। अगर आपके ज़्यादा हो तो एक एग्जाम्पल दूँ।
0: जी जी,
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था एंड आई यूज माई पॉइंट्स, और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट।
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फायदा है, ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट,
1: बहुत ज़्यादा कर रहे
0: हैं। पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़े इदा फड़ लिया कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना। तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं, हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता
0: है, और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना। तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना। तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए, और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट। समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑन करना तो उस पर भी चल सकता है,
1: इकोनॉमी तो और भी इजी है।
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए।
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट। 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी,
1: इज इट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीस पे, बुलवर्ड्स पे
0: जी,
1: ठीक है। बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है।
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है।
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं यार $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है।
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना।
0: अच्छा,
1: तो फ्री हो गया ना?
0: तो काफी,
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग जाते हैं, और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल, तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी, जी।
1: ठीक है, तो दिस इज एट द बेसिक लेवल। तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वुलवर्ड्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिंग जाते हैं, जेबी हाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है
0: जी।
1: तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है $20 per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स।
0: जी,
1: ठीक है, 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स। अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber राइड लेते होंगे
0: जी। बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है। अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो।
0: ओके,
1: 5% का काम है, आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में, एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank, visa or master, या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार्ड खरीदो, वुलीस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 पॉइंट। अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20, 100,000, 100,
0: अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है पुलिस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: वो आपके व्यूज शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीस इज क्वांटस, और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे, सिमिलरली कोल्स में गए फर्क इतना है, क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स, और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑज़ी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है, मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड्स हैं जो हर हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 पॉइंट्स पर डॉलर, नॉट 1 पॉइंट पर डॉलर, 10 पॉइंट्स पर डॉलर, और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है सर्विस है दैट इज गेड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट, अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे,
1: हाँ जी,
0: मतलब एक, सिर्फ एक बंदे की 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की
1: एवरेज,
0: ओके
1: 70,000 की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया,
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है,
0: ओके जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी है ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना,
1: कॉल्स के चलते हैं सिर्फ ऊबर के,
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वुलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे,
1: काफ़ी टाइम से 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वुलीज कर ही रहा है, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट कल किसने देखा, नो वन हैज अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं, क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं,
0: ओके
1: रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश बुली जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज हैं या अब एम्प्लॉयज को भूल जाओ, अब हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो तीन चार जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है, अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCN ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो,
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है, एवरी वीक, इस साल अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ दो हफ्ते ऐसे आए हैं जहां पे 10% ऑफ था,
0: ओके,
1: उसके अलावा हर वीक 10 पॉइंट्स पर डॉलर ऑन गिफ्ट कार्ड्स,
0: okay.
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी,
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं, कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा, मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम भी इंडियंस, हम बहुत वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, सो इफ यू, जहां तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट, आजकल तो AI आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT क्लॉड लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं, आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो। दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है, ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50% तो ऐसे हो गया, बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला,
0: ये तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती, जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो, राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट, तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई, बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा, कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो।
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी,
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग, तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में, उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट

0: फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी. बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम.
1: जी
0: ठीक है. अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
1: जी,
0: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
1: जी,
0: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर. रिटर्न
1: अच्छा वाह,
0: $3,600 AUD फॉर टू एडल्ट्स एंड अ टॉडलर रिटर्न. आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट.
1: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो.
0: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में. 5 hours. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
1: जी,
0: इफ यू डिवाइड 15,000 बाय 5 hours कितना आता है?
1: 3,000.
0: हाँ, अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
1: जी. इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
0: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी. इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ 6 है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
1: जी
0: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं. बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे.
1: ओके,
0: राइट, साफ सी बात है. तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट. अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं कि $1,200 में फैमिली ऑफ 6 इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक. फैमिली ऑफ 6, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे. ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
1: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता.
0: कार किसके पास नहीं होती आजकल, प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना, राइट? कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए. देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100. अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2 lakh पॉइंट दे रहे हैं वो.
1: अच्छा,
0: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे
1: ओके
0: अप टू 200,000. वैसे एक बिजनेस को $2 lakh खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स. अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा. और अगर यही 600 दे के आपको 2 lakh पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
1: ह्यूज डील.
0: इट्स ह्यूज, ह्यूज.
1: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
0: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए. क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई इजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं, राइट? बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 to 15 hours अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 month पीरियड बोल रहा हूँ, इफ़ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
1: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा. ये मेन है.
0: ये मेन है बट ये मेन नहीं होना चाहिए बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2,000 की आती है, 1,800 में नहीं हो सकता.
1: हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न.
0: हाँ, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े.
1: हाँ वो तो, हाँ मतलब एवरीबडी लाइक्स अ गुड,
0: एवरीबडी वुड लाइक टू डू इट, राइट? इवन विदाउट डूइंग अ सर्वे 90% ऑफ योर क्लाइंट जो आपके लिसनर्स हैं अगर वो ये बात सुने तो 90% वुड पुट द हैंड अप एंड से ये मुझे 10 नहीं खर्च करने लेकिन अगर दो की जगह 2200 या 2500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है विच मीन्स लाउंज 40 किलो हमें क्या चाहिए होता है हाँ। लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे और एक चीज़ है जेट लैग एटलीस्ट 5 फैमिलीज इन द लास्ट 6 डेज हैव टोल्ड मी कि हॉलीडे से आए बेटी बीमार हो गई स्कूल नहीं गई गैस घर पे कौन बैठा है पेरेंट्स
1: बिल्कुल सही
0: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है पेरेंट्स को
1: बिल्कुल
0: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना
1: बिल्कुल सही बात है
0: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता
1: ये वेट का तो बहुत इशू रहता है
0: ठीक है ना
1: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर तो आपकी बात तो सही है
0: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6 नॉट इवन 4
1: अगर मैं ऐसे सॉरी आपको टोका अगर मैं ऐसे डाइसेक्ट कर दूं
0: जी
1: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
0: जी
1: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को वन वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर
0: आप 1,00,000 चलो मोटा मोटा
1: चलो 1,00,000 पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे है ना तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है पर हेड
0: हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
1: जी
0: ठीक है आपको 1,00,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1,00,000 क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
1: जी
0: इकोनॉमी होगी आपकी प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की
1: ओके
0: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता
1: बिजनेस का मुझे
0: पता बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरीडे प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में 68 भी हो सकती है अराउंड 70 लगा लेते हैं
1: जी.
0: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
1: अच्छा
0: उससे सस्ते में उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट्स यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो
1: अब इसमें एक और आ जाता सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है रुझान है वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
0: जी
1: इकट्ठे करने पे तो ये कंपनीज क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स है ना तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही हैं पहले से कि कम कर रही हैं
0: 100% ज्यादा कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है
1: तो बढ़ रहा है मतलब
0: बढ़ रहा है अभी AMP बैंक है एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
1: जी
0: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
1: जी
0: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं ठीक है लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10-50-1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग आप एक बार सोच कर देखो व्हाई विल अ बैंक डू दैट ठीक है
1: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया थैंक यू वेरी मच मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
0: जी
1: ऐसा क्या हो गया ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
0: जी
1: बिकॉज हैविंग सेड दैट ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया किसी बैंक कंपनी का नाम लिया तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशनड बाय देम
0: नो
1: आप उनके एजेंट नहीं है
0: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है
1: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है सच नहीं है आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं राइट तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया
0: ओके सर 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
1: जी
0: वो 2 साल के लिए लंदन गया था
1: ओके
0: तो उसने बुलाया मुझे तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का क्रिस फ्लायर कार्ड जो अब नहीं है
1: ओके
0: ठीक है वो लेगेसी कार्ड है वो बंद कर दिया
1: जी
0: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे
1: ओके
0: अब एज यू डू आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
1: जी।
0: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था।
1: ओके।
0: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
1: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया। ओके।
0: क्योंकि मैंने अपने लॉगिन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है क्या है, तो वहाँ एक पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000। तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है। देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए। हो गए तो वहाँ पे चीज लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम। बटन दबाया, बैठे हो बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल। 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
1: जी।
0: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में,
1: पॉइंट खत्म हो गए थे।
0: पॉइंट ही नहीं। अब आप खुद सोचो, आप इतनी चौड़ी, आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की?
1: जी जी जी,
0: ठीक है
1: जी।
0: इतनी चौड़ी होती है
1: जी,
0: राइट? और इकोनॉमी कितनी होती है?
1: हाँ,
0: आपको ऐसे खाना पड़ता है।
1: मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल होता है, मैं तो घुटने,
0: आप अपने टक ये, हाँ
1: यस,
0: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
1: जी,
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था, जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स, लिटरली टीयर्स में था। तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है, इसको पढ़ना है। तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी, तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए।
1: ओके।
0: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया, बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया, एक फ्रेंड की हेल्प करी।
1: Okay.
0: तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर। उसके पास 1,000,000 पॉइंट्स थे, लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या। तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स।
1: क्या बात है भाई, रॉकस्टार में था, टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता। आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं। थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ। जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से, या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से, और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू।
0: जी, पहली बात तो ये है कि देखो, पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
1: जी,
0: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
1: जी,
0: ठीक है। मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 years of age, so they have lived their first half of their life. और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ। तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं, अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए, अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है, हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट, तो आप क्यों ना करो, स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं, ठीक है। नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी, जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, एंड यूट्यूब। ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस, क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम टर्न, हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी, वे डू वी टर्न लेफ्ट इनटू बिजनेस एंड फर्स्ट। तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया, टर्न लेफ्ट फॉर लेस। तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी। और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं, इस महीने वो 24th जून को है, देन द वेबसाइट एड्रेस इज LP, ठीक है, L फॉर लीमा, P फॉर पापा, LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना, lp.turnleftforless.com
1: जी।
0: और लास्ट थिंग, अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके, अगर वो रेडियो हांजी करके लिखेंगे, आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन।
1: इसलिए तो बुलाया कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें, फ्री कंसल्टेशन ले एक बार, और फिर बाद में जैसा आपका मन माने, वन ऑन वन करनी है जी, मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप कर सकते हैं। ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए, हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया, ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया, ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए। पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है। एपिसोड कैसा लगा और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ में कोई ख़ास तब्दीली आई या नहीं आई, कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए। ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट। मैं हूँ कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
4: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
5: की होया एनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
6: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
5: आज सिमी पैन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
6: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
5: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
7: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानो उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford!

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
3: सूरज देवता
2: की मतलब
3: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
2: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

हाँ जी रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 12 जून ते शुक्रवार दा दिन है ते आपां हुण रेडियो हाँ जी दे सिडनी स्टेशन तो लाइव शोज एक बार फिर तो लैके हो गए हाजर। लंबे ब्रेक तो बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ते प्रोग्राम अगले हफ्ते तो बकायदा शुरू करांगे। जेड़े जेड़े दिन दे जेड़े जेड़े प्रोग्राम हुंदे सी ते कुछ नवे भी, पर अज शुक्रवार के दिन थोनू दस दिए कि अज प्रधान इलाका कड़ा नहीं होना क्योंकि हरसीन जी अज हाजिर नहीं है। सो मैं थोड़े नाल अज फिल्मों दी ही गल्लां करनियां ने। प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा थोड़ा लंबा चलेगा, वो तो बाद एक इंटरव्यू भी हैगी है इम्तियाज अली होना दी, वो भी थानू सुनावांगे प्रोग्राम के अखीर दे विच। पर फिलहाल कुछ नवे गाने लैके आवांगे। पर्दा बेपर्दा इस ब्रेक तो बाद शुरू कर दें। जी खान का गाना सुन लो।